0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर

0: एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
1: cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico.
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम का पांचवा अध्याय वार्षिक पूजन धर्म विधि कालचक्र को समर्पित है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, जिससे हर विश्वासी के जीवन में इसके मूल्य की व्याख्या हो सके। सर्वप्रथम हमारे लिए यह बात महत्वपूर्ण हो जाता है, पूजन धर्म विधि वार्षिक कालचक्र में ख्रिस्तीय त्योहारों को रेखांकित करना कलिसियाई भाषा को विस्तृत बनाती है, जिसके लिए हम ईश सेवक मठाधीश प्रॉस्पर ग्विरेंजर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि विश्व प्रेरितिक पत्र मीडियातोर देई में संत पापा पियूस 12वें ही कहते हैं, यह अतीत की घटनाओं का निर्जीव प्रस्तुतिकरण नहीं है या एक सरल और सिर्फ एक पिछले युग का रिकॉर्ड मात्र नहीं है, यह हमारे लिए स्वयं ख्रिस्त की उपस्थिति है जो कलिस्य में हमेशा जीवित रहते हैं। यहाँ हम उनके अति करुणामयी यात्रा को पाते हैं, जिसे उन्होंने अपने भौतिक जीवन में शुरू किया इस उद्देश्य से कि वे मानव को अपने रहस्यों के बारे में बता सकें और उन्हें स्वयं अपने में जी सकें। उन रहस्यों को हम आज भी हमेशा की तरह उपस्थित और सजीव पाते हैं। पूजन धर्म विधि कालचक्र को इस भांति हमें इस रूप में समझने की जरूरत है कि वह एक निरंतर मुक्ति का नवीकृत कार्य है, जिसे ख्रिस्त इतिहास में पूरा करते हैं। कलिसिया अपने इस सामायिक कालचक्र के द्वारा ईश्वर के मुक्ति कार्य संग जुड़ी रहती है, जिससे सभी विश्वासीगण उनकी कृपा से परिपूर्ण हो सकें। संत पापा लियो ने कहा कि ईश्वर से मिलन जो हमारे लिए मरकर पुनः जी उठे, वह लक्ष्य है जिसका अनुसरण कलिसिया करती है, जहां वह पास्का के समारोह को अपनी हर गतिविधि के केंद्र बिंदु में समाहित करती है। अतः धर्म सभा के आचार्य रविवार को पूरे धर्म विधि काल की नींव और मूल मानते हैं, जो वास्तविक त्योहार का दिन है। बहुत से आधुनिक भाषाओं में हम इसे दिएस डोमिनी की संज्ञा में इंगित पाते हैं, जो हमारे लिए प्रभु का दिन है। यहाँ तक कि इन भाषाओं में जहाँ हम इसे सूर्य के दिन स्वरूप इंगित पाते हैं, यह ख्रिस्त से संयुक्ति पर चिंतन हेतु हमें अग्रसर करता है। वे धार्मिकता के सूर्य हैं, जो हर व्यक्ति को प्रकाशमान करते हैं। संत पापा योहन पौलुस द्वितीय अपने प्रेरितिक प्रबोधन दिएस डोमिनी में शिक्षा देते हुए कहते हैं कि रविवार प्रभु का दिन है, यह कलिसिया का दिवस है, मानव का दिन और अंततः दिनों का दिन। संत पापा लियो ने कहा, चूंकि रविवार साप्ताहिक पास्का है, यह हमें उस दिन की याद दिलाती है जब यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे, यह वह दिन भी है जो हमारे लिए समय के अर्थ को प्रकट करता है। पुनरुत्थान से फूटना, यह मानव समय से परे जाना, महीने वर्षों सदियों जैसे कि एक दिशा में सधी तीर जो अपने लक्ष्य ख्रिस्त के द्वितीय आगमन की ओर इंगित कराती हो।
1: La domenica prefigura il giorno finale.
0: रविवार हमारे लिए अंतिम दिन, न्याय के दिन का पूर्वाभास देता है जब हम पुनर्जीवित होंगे। संत पापा लियो ने कहा कि रविवार के पवित्र करण हेतु हमारे लिए यह जरूरी है कि हम यूखरिस्त का अनुष्ठान करें, ईश वचनों को सुने और ख्रिस्त के शरीर में सहभागी हों। जैसे कि धर्म सभा के आचार्य कहते हैं, यह एक साथ आते हुए एक होना है, कहने का अर्थ यह ख्रिस्तियों का आनंदमय मिलन है। इस समारोह में ख्रिस्तीय समुदाय यीशु ख्रिस्त के संग अपनी एकता को दृश्यमान बनाते और ख्रिस्त के संग अपने जुड़े होने और कलिसिया के प्रति अपनी निष्ठा का साक्ष्य प्रस्तुत

0: करते हैं।
1: यह समुदाय अपनी आभासी उपस्थिति से नहीं बदली जा सकती है और ना ही इसे हम एक निष्क्रिय मिलन तक ही सीमित कर सकते हैं। धर्म विधि का समुदाय वास्तव में भाई बहनों के सक्रिय सहभागिता से पूरी होती है, जिसे एक साथ बुलाया जाता है ताकि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किया जा सके, जिन्होंने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित करके उन्हें फिर से जीवन दिया और एक आशा को बनाए रखा है। इस संदर्भ में संत पापा लियो ने कहा कि मैं हर किसी से आग्रह करता हूँ कि आप एक बेहतर संभव परिस्थिति की खोज करें, जिससे वे भी जो रविवार की धर्म विधि में सहभागी होने हेतु समय नहीं निकाल पाते हैं, उसमें सहभागी हो सकें। प्रिय मित्रों, संत पापा ने कहा कि वार्षिक पूजन धर्म विधि कालचक्र का जो रविवारों के द्वारा विराम दिया जाता है, अपना एक आकर्षक इतिहास है, जहां हम कलिस्य के विश्वास और आस्था को गुंथा पाते हैं। वास्तव में द्वितीय सदी के प्रारंभिक काल से ही साप्ताहिक पास्का समारोह अपने में उस वार्षिक पास्का अति समारोही त्योहार से संयुक्त था, जिसे अति हर्षोल्लास के साथ 50 दिनों तक मनाया जाता था, जिसकी चरम सीमा पेंतेकोस्त होती थी। इसकी तैयारी 40 काल से ही पश्चाताप के मनोभाव से शुरू होती थी। ख्रिस्त जयंती के काल चक्र का विकास बाद में हुआ, जो पास्का कालचक्र की शैली पर आधारित था, जिसके फलस्वरूप हम शब्द के शरीर धारण रहस्य को जीने के योग्य होते हैं, जहां हम ख्रिस्त के जन्म और दुनिया में उनके प्रकटीकरण को पाते हैं। कलिसिया इसके उपरांत विभिन्न समयों के अंतराल में कुमारी मरियम की आराधना को अपने में समाहित करती है, जो उनके बेटे के मुक्तिदायी कार्य के एक अविभाज्य बंधन से जुड़ा हुआ है, और शहीदों और अन्य संतों की स्मृति, जो स्वर्ग में ईश्वर की महिमा गाते और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं।
2: L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza.
1: पूजन विधि वार्षिक कालचक्र इस भांति मुक्ति के इतिहास की शिक्षा को संस्कार के रूप में दोहराती है। यह मसीह की प्रतीक्षा से लेकर पास्का रहस्य की पूर्णता और भविष्य में महिमा के पूर्व ज्ञान तक विश्वासियों का मार्गदर्शन करती है। इसमें कलिसिया ख्रिस्त के मुक्तिदायी रहस्य की महत्वपूर्णता का समारोह विश्वासियों को पूर्ण गहराई में सहभागी होने के योग्य बनाते हुए मनाती है। यही कारण है पूजन विधि वार्षिक कालचक्र सभी प्रेरित कार्यों के लिए मुख्य मार्गदर्शिका और महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली की एक रूपरेखा बनती है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो 14वें ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज ज्यादा तापमान की वजह से बुधवार ये आम दर्शन समारोह सन पेत्रुस महागिरजाघर में हुए। पोलिश तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हुए संत पापा लियो 14वें ने याद दिलाया कि अगस्त का महीना पोलिश इतिहास और आध्यात्मिकता में एक खास जगह रखता है। संत पापा ने कहा, मैं पोलैंड के लोगों को दिल से अभिवादन करता हूँ। अगस्त आपके लिए खास सालगिरह का महीना है। माता मरिया की दुआ की वजह से 15 अगस्त 1920 को वारसाव की लड़ाई में जीत मिली, जिसने पोलैंड और यूरोप की किस्मत बदल दी। 15 अगस्त स्वर्गारोहण के एक दिन पहले हम संत मैक्सिमिलियन मरिया कोलबे की याद करते हैं, जिन्होंने आउटस्विट्स के जर्मन नाजी यातना शिविर में एक साथी कैदी के लिए अपनी जान दे दी थी। इन घटनाओं की यादें हमें निष्कलंक माता मरियम के दिखाए शांति के रास्ते पर ले जाएं। इसके बाद संत पापा ने स्पानी भाषी विश्वासियों का अभिवादन कर 10 अगस्त को कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में आए जबरदस्त भूकंप से तबाह लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं और प्रार्थना दोहराई। इस भूकंप में अब तक 250 लोगों के मरने की खबर मिली है। मृतकों के अनंत शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए संत पापा लियो 14वें ने मृतकों के परिवारों और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे लोगों और इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना का भरोसा दिलाया। उन्होंने आगे कहा, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बचाव काम में और पीड़ितों की मदद करने में सहयोग दिया है। संत पापा ने कोलंबिया को शुरुआती आर्थिक मदद भेजा, जो इस आपातकाल के समय में उनकी गरीबी का एक पक्का संकेत है। 1,00,000 यूरो की यह रकम सीधे कोलंबियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के राष्ट्रीय प्रेरितिक एवं सामाजिक मामलों के सचिवालय को भेजी गई, जो मदद इकट्ठा करने और बांटने के लिए एक केंद्रीकृत समन्वय बिंदु के तौर पर काम कर रहा है, ताकि यह प्रभावित धर्म प्रांतों को एकजुटता से मदद दे सके। उधर फिलिस्तीन के आखिरी बचे हुए क्रिस्तीय गांव तैबेह में बसने वालों के हमले बार बार होने वाली सच्चाई बन गए हैं। फादर बशर फवादले, जो पिछले 5 सालों से मुक्तिदाता क्रिस्त लैटिन पल्ली के पल्ली पुरोहित के तौर पर काम कर रहे हैं, उन्हें डर है कि स्थानीय परिवारों को अपनी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तैबेह बाइबल में एफ्रेम नाम से जाना जाता है, जहां कहा जाता है कि येसु और उनके शिष्यों ने शरण ली थी। स्थानीय समुदाय को अब सुनियोजित तरीके से डराने, धमकाने, संपत्ति जब्त करने और बस्तियों पर कब्जा करने का सामना करना पड़ रहा है। इस रविवार को इजरायली सेना ने तैबेह को बाहर के लोगों के लिए बंद कर दिया, जिसे इसराइली लोग असल में फिलिस्तीनी शहर में नहीं जा पा रहे हैं। एक मिलिट्री प्रवक्ता के मुताबिक यह रोक सिर्फ इसराइलियों के लिए लागू होती है, फिलिस्तीनियों के लिए नहीं, और इसे इलाके में इसराइलियों के कई हिंसक हमलों के बाद इलाके के लोगों की सुरक्षा के लिए लागू किया गया है। उधर म्यांमार में यांगून के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल चार्ल्स मोंग बो देश के विश्वासियों को याद दिलाते हैं कि भले ही वे बहुत ज्यादा दुख झेल रहे हैं, वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि ख्रीस्त उनके साथ हैं और वे मुश्किलों से जूझ रहे देश के युवाओं से विवेक रखने वाले पुरुष और महिला बनने की अपील करते हैं। रविवार मिसा समारोह के दौरान अपने उपदेश में म्यांमार धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष ने विश्वासियों को याद दिलाया कि संत मती के सुसमाचार के अनुसार मार्ग में तूफान के दौरान डरे हुए शिष्यों की तरह उन्हें अपना डर त्यागना होगा और साहस रखना होगा, यह जानकर कि प्रभु उनके पास हैं। कार्डिनल ने माना कि म्यांमार के लोगों को भारी पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। लड़ाई और हिंसा, बेघर होने और गरीबी, डर और अनिश्चितता, दुख और नुकसान के तूफान आए हैं, जिन्होंने घर, स्कूल, रोजी रोटी और कभी कभी अपनों की जान भी छीन ली है। कार्डिनल ने माना कि कई परिवार पूछ रहे हैं, यह तूफान कब खत्म होगा? कई जवान लोग पूछ रहे हैं, मेरा भविष्य कैसा होगा?
कई माता पिता चिंता करते हैं, क्या मेरे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। इस संदर्भ में कार्डिनल बो ने कहा, ईश्वर को एक माँ जो अपने बच्चों को दिलासा देती है, एक पिता जो अपने परिवार की रक्षा करता है, एक पुरोहित जो मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ रहता है, या बेघर परिवारों की सेवा करने वाली धर्म बहनों में देखा जा सकता है। कार्डिनल ने आगे कहा, ईश्वर किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए मौजूद होते हैं जो किसी दूसरे भूखे व्यक्ति के साथ थोड़ा खाना बांटता है, एक क्रिश्चिय के जरिए जो कहता है मैं नफरत नहीं करूंगा, एक ऐसे व्यक्ति के जरिए जो कहता है मैं शांति चुनूंगा। कार्डिनल बो ने विश्वासियों को यह भी याद दिलाया कि क्रिस्त हमारे साथ हैं। विश्वास हमेशा आखिरी शब्द होता है और उनसे अपनी नजर हमेशा यीशु पर रखने की अपील की। उधर 9 अगस्त को चेन्नई के स्टेला मारिस कॉलेज में भारत के 5वें नेशनल मार्च फॉर लाइफ के लिए 5,000 से ज्यादा लोग एकत्रित हुए। यह एक ऐसा मौका था जिसकी अहमियत सिर्फ पब्लिक असेंबली से कहीं ज्यादा थी। असल में यह कार्यक्रम उन परिवारों, छात्रों और स्वयंसेवकों की लगातार कोशिशों को दिखाता है जिन्होंने 5 सालों में अपने अपने इलाकों, कॉलेजों और समुदायों में लगातार काम किया था ताकि अजन्मे बच्चों की मौत को रोका जा सके। यह खास कामयाबी इस साल के मार्च को समझने के लिए जरूरी थी जिसे मद्रास मैलापुर महाधर्म प्रांत ने मेजबानी की थी और भारतीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन CBCI के तहत कारिस इंडिया ने आयोजित किया था जो एक सालाना मीटिंग के तौर पर शुरू हुआ था। वह समय के साथ एक संगठित राष्ट्रीय नेटवर्क बन गया। पहली बार महाधर्म प्रांत ने हर पल्ली में प्रो लाइफ सेल बनाया जिससे प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का एक संगठनात्मक बेस बना। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवारीय आम दर्शन समारोह में संत पापा लियो की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा लियो ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पेत्रुस महागिरजाघर में एकत्रित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा।
2: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico.
1: प्रिय भाइयों एवं बहनों, साक्रो सांतुम कॉन्सिलियम का पांचवा अध्याय वार्षिक पूजन धर्म विधि कालचक्र को समर्पित है, जिसकी चर्चा आज हम करेंगे, जिससे हर विश्वासी के जीवन में इसके मूल्य की व्याख्या हो सके। सर्वप्रथम हमारे लिए यह बात महत्वपूर्ण हो जाता है, पूजन धर्म विधि वार्षिक कालचक्र में ख्रिस्तीय त्योहारों को रेखांकित करना कलिसियाई भाषा को विस्तृत बनाती है, जिसके लिए हम ईश सेवक मठाधीश प्रॉस्पर ग्विरेंजर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हैं। संत पापा लियो ने कहा कि विश्व प्रेरितिक पत्र मीडियातोर देई में संत पापा पियूस 12वें ही कहते हैं, यह अतीत की घटनाओं का निर्जीव प्रस्तुतिकरण नहीं है या एक सरल और सिर्फ एक पिछले युग का रिकॉर्ड मात्र नहीं है, यह हमारे लिए स्वयं ख्रिस्त की उपस्थिति है जो कलिसिया में हमेशा जीवित रहते हैं। यहाँ हम उनके अति करुणामयी यात्रा को पाते हैं, जिसे उन्होंने अपने भौतिक जीवन में शुरू किया इस उद्देश्य से कि वे मानव को अपने रहस्यों के बारे में बता सकें और उन्हें स्वयं अपने में जी सकें। उन रहस्यों को हम आज भी हमेशा की तरह उपस्थित और सजीव पाते हैं। पूजन धर्म विधि कालचक्र को इस भांति हमें इस रूप में समझने की जरूरत है कि वह एक निरंतर मुक्ति का नवीकृत कार्य है, जिसे ख्रिस्त इतिहास में पूरा करते हैं। कलिसिया अपने इस सामायिक कालचक्र के द्वारा ईश्वर के मुक्ति कार्य संग जुड़ी रहती है, जिससे सभी विश्वासीगण उनकी कृपा से परिपूर्ण हो सकें। संत पापा लियो ने कहा कि ईश्वर से मिलन जो हमारे लिए मरकर पुनः जी उठे, वह लक्ष्य है जिसका अनुसरण कलिसिया करती है, जहां वह पास्का के समारोह को अपने हर गतिविधि के केंद्र बिंदु में समाहित करती है। अतः धर्म सभा के आचार्य रविवार को पूरे धर्म विधि काल की नींव और मूल मानते हैं, जो वास्तविक त्योहार का दिन है। बहुत से आधुनिक भाषाओं में हम इसे दिएस डोमिनी की संज्ञा में इंगित पाते हैं, जो हमारे लिए प्रभु का दिन है। यहाँ तक कि इन भाषाओं में जहाँ हम इसे सूर्य के दिन स्वरूप इंगित पाते हैं, यह ख्रिस्त से संयुक्ति पर चिंतन हेतु हमें अग्रसर करता है। वे धार्मिकता के सूर्य हैं, जो हर व्यक्ति को प्रकाशमान करते हैं। संत पापा योहन पौलुस द्वितीय अपने प्रेरितिक प्रबोधन दिएस डोमिनी में शिक्षा देते हुए कहते हैं कि रविवार प्रभु का दिन है, यह कलिसिया का दिवस है, मानव का दिन और अंततः दिनों का दिन। संत पापा लियो ने कहा, चूंकि रविवार साप्ताहिक पास्का है, यह हमें उस दिन की याद दिलाती है जब यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे। यह वह दिन भी है जो हमारे लिए समय के अर्थ को प्रकट करता है। पुनरुत्थान से फूटना, यह मानव समय से परे जाना, महीने वर्षों सदियों जैसे कि एक दिशा में सधी तीर जो अपने लक्ष्य ख्रीस्त के द्वितीय आगमन की ओर इंगित कराती हो।
2: La domenica prefigura il giorno finale.
1: रविवार हमारे लिए अंतिम दिन, न्याय के दिन का पूर्वाभास देता है जब हम पुनर्जीवित होंगे। संत पापा लियो ने कहा कि रविवार के पवित्र करण हेतु हमारे लिए यह जरूरी है कि हम यूखरिस्त का अनुष्ठान करें, ईश वचनों को सुने और ख्रीस्त के शरीर में सहभागी हों। जैसे कि धर्म सभा के आचार्य कहते हैं, यह एक साथ आते हुए एक होना है। कहने का अर्थ, यह ख्रिस्तियों का आनंदमय मिलन है। इस समारोह में ख्रिस्तीय समुदाय यीशु ख्रिस्त के संग अपनी एकता को दृश्यमान बनाते और ख्रिस्त के संग अपने जुड़े होने और कलीसिया के प्रति अपनी निष्ठा का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। यह समुदाय अपनी आभासी उपस्थिति से नहीं बदली जा सकती है और ना ही इसे हम एक निष्क्रिय मिलन तक ही सीमित कर सकते हैं। धर्म विधि का समुदाय वास्तव में भाई बहनों के सक्रिय सहभागिता से पूरी होती है, जिसे एक साथ बुलाया जाता है ताकि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के भाव प्रकट किया जा सके, जिन्होंने यीशु मसीह को मृतकों में से जीवित करके उन्हें फिर से जीवन दिया और एक आशा को बनाए रखा है। इस संदर्भ में संत पापा लियो ने कहा कि मैं हर किसी से आग्रह करता हूँ कि आप एक बेहतर संभव परिस्थिति की खोज करें, जिससे वे भी जो रविवार की धर्म विधि में सहभागी होने हेतु समय नहीं निकाल पाते हैं, उसमें सहभागी हो सकें। प्रिय मित्रों, संत पापा ने कहा कि वार्षिक पूजन धर्म विधि कालचक्र का जो रविवारों के द्वारा विराम दिया जाता है, अपना एक आकर्षक इतिहास है जहां हम कलीसिया के विश्वास और आस्था को गुंथा पाते हैं। वास्तव में द्वितीय सदी के प्रारंभिक काल से ही साप्ताहिक पास्का समारोह अपने में उस वार्षिक पास्का अति समारोही त्योहार से संयुक्त था, जिसे अति हर्षोल्लास के साथ 50 दिनों तक मनाया जाता था, जिसकी चरम सीमा पेंतेकोस्त होती थी। इसकी तैयारी 40 काल से ही पश्चाताप के मनोभाव से शुरू होती थी। ख्रीस्त जयंती के काल चक्र का विकास बाद में हुआ, जो पास्का कालचक्र की शैली पर आधारित था, जिसके फलस्वरूप हम शब्द के शरीर धारण रहस्य को जीने के योग्य होते हैं, जहां हम ख्रीस्त के जन्म और दुनिया में उनके प्रकटीकरण को पाते हैं। कलीसिया इसके उपरांत विभिन्न समयों के अंतराल में कुमारी मरियम की आराधना को अपने में सम्माहित करती है, जो उनके बेटे के मुक्तिदायी कार्य के एक अविभाज्य बंधन से जुड़ा हुआ है, और शहीदों और अन्य संतों की स्मृति जो स्वर्ग में ईश्वर की महिमा गाते और हमारे लिए प्रार्थना करते हैं।
2: L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza.
1: पूजन विधि वार्षिक कालचक्र इस भांति मुक्ति के इतिहास की शिक्षा को संस्कार के रूप में दोहराती है। यह मसीह की प्रतीक्षा से लेकर पास्का रहस्य की पूर्णता और भविष्य में महिमा के पूर्व ज्ञान तक विश्वासियों का मार्गदर्शन करती है। इसमें कलीसिया ख्रीस्त के मुक्तिदायी रहस्य की महत्वपूर्णता का समारोह विश्वासियों को पूर्ण गहराई में सहभागी होने के योग्य बनाते हुए मनाती है। यही कारण है पूजन विधि वार्षिक कालचक्र सभी प्रेरित कार्यों के लिए मुख्य मार्गदर्शिका और महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली की एक रूपरेखा बनती है। इतना कहने के बाद संत पापा लियो 14वें ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारी प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज ज्यादा तापमान की वजह से बुधवार ये आम दर्शन समारोह सन पेत्रुस महागिरजाघर में हुए। पोलिश तीर्थ यात्रियों का स्वागत करते हुए संत पापा लियो 14वें ने याद दिलाया कि अगस्त का महीना पोलिश इतिहास और आध्यात्मिकता में एक खास जगह रखता है। संत पापा ने कहा, मैं पोलैंड के लोगों को दिल से अभिवादन करता हूँ। अगस्त आपके लिए खास सालगिरह का महीना है। माता मरिया की दुआ की वजह से 15 अगस्त 1920 को वारसाव की लड़ाई में जीत मिली, जिसने पोलैंड और यूरोप की किस्मत बदल दी। 15 अगस्त स्वर्गारोहण के एक दिन पहले हम संत मैक्सिमिलियन मरिया कोलबे की याद करते हैं, जिन्होंने आउटस्विट्ज के जर्मन नाजी यातना शिविर में एक साथी कैदी के लिए अपनी जान दे दी थी। इन घटनाओं की यादें हमें निष्कलंक माता मरियम के दिखाए शांति के रास्ते पर ले जाएं। इसके बाद संत पापा ने स्पानी भाषी विश्वासियों का अभिवादन कर 10 अगस्त को कोलंबिया के पश्चिमी हिस्से में आए जबरदस्त भूकंप से तबाह लोगों के प्रति अपनी संवेदनाएं और प्रार्थना दोहराई। इस भूकंप में अब तक 250 लोगों के मरने की खबर मिली है। मृतकों के अनंत शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना करते हुए संत पापा लियो 14वें ने मृतकों के परिवारों और अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे लोगों और इस दुखद घटना से प्रभावित सभी लोगों के लिए भी प्रार्थना का भरोसा दिलाया। उन्होंने आगे कहा, मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बचाव काम में और पीड़ितों की मदद करने में सहयोग दिया है। संत पापा ने कोलंबिया को शुरुआती आर्थिक मदद भेजा, जो इस आपातकाल के समय में उनकी करीबी का एक पक्का संकेत है। 1,00,000 यूरो की यह रकम सीधे कोलंबियन धर्माध्यक्ष सम्मेलन के राष्ट्रीय प्रेरितिक एवं सामाजिक मामलों के सचिवालय को भेजी गई, जो मदद इकट्ठा करने और बांटने के लिए एक केंद्रीकृत समन्वय बिंदु के तौर पर काम कर रहा है, ताकि यह प्रभावित धर्म प्रांतों को एकजुटता से मदद दे सके। उधर फिलिस्तीन के आखिरी बचे हुए क्रिस्तीय गांव तैबेह में बसने वालों के हमले बार बार होने वाली सच्चाई बन गए हैं।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र

0: और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र काथी कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पहला भेद, यीशु यर्दन नदी में बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: कन्या, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का दूसरा भेद, काना के विवाह भोज में यीशु अपने आप को प्रकट करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का तीसरा भेद, मन परिवर्तन के आह्वान के साथ प्रभु यीशु ईश्वर के राज्य की घोषणा करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का चौथा भेद प्रभु यीशु का रूपांतरण हो जाता है। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंतकाल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: ज्योति का पांचवा भेद, पास का रहस्य के सांस्कारिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुंवारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता,
1: हम पर दया कर।
0: पवित्र आत्मा ईश्वर,
1: हम पर दया कर।
0: संत मरियम,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वर की पवित्र माँ,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारियों की पवित्र कुंवारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्त की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ईश्वरीय कृपा की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति निर्मल माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति शुद्ध माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: कुंवारी माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: निष्कलंक माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रिय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रशंसनीय माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सुसमति की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: सृष्टिकर्ता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: मुक्तिदाता की माता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति चौकस कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्तुति योग्य कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शक्तिमती कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दयालु कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मनिष्ठ कुमारी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हमारे आनंद का मूल,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पवित्र आत्मा का मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदरणीय पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भक्ति का उत्तम पात्र,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आध्यात्मिक गुलाब,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दाऊद का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हस्तिदंत का गढ़,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ण मंदिर,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संधि की मंजूषा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: भोर का तारा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: रोगियों का स्वास्थ्य,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: पापियों की शरण,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: दुखियों का दिलासा,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: ख्रिस्तियों की सहायता,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्गदूतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्म पुरखों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: नबियों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: प्रेरितों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शहीदों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: धर्मवीरों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: संतों की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: अति पवित्र माला की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: शांति की महारानी,
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

हे मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। पिता और पुत्र

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
1: कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय दिलीप एक्का।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है।

मरी हुई मक्खियां सुगंधित द्रव्य बिगाड़ती हैं, उसी प्रकार थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती हैं। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के प्रथम पद में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस अध्याय का मुख्य संदेश समझदारी और मूर्खता के बीच एक व्यावहारिक अंतर दर्शाना है, जो दिखाता है कि कैसे थोड़ी सी मूर्खता जिंदगी भर की समझदारी को बर्बाद कर सकती है। उपदेशक छोटी छोटी सूक्तियों का इस्तेमाल कर समझाता है कि समझदारी से पूर्ण चुनाव, सोच समझकर कही गई बातें और सही तैयारी से जिंदगी आसान हो जाती है, जबकि मूर्ख लोग आलस और लापरवाही भरी बातों से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। 10वें अध्याय में थोड़ी सी मूर्खता की नुकसान पहुंचाने वाली ताकत, तैयारी की अहमियत और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पर बल दिया गया है। यह अध्याय प्रज्ञा, बुद्धि और समझदारी के शांत एवं प्रायः नजरअंदाज किए जाने वाले लाभों और मूर्खता के विनाशकारी स्वभाव के बीच अंतर दर्शाता है। इस अध्याय के प्रथम पद में ही उपदेशक स्मरण दिला देता है कि जिस प्रकार मरी हुई मक्खियां सुगंधित द्रव्य बिगाड़ती हैं, उसी प्रकार थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती हैं। इस पद में सुलेमान ने कहावतों का एक जाना पहचाना तरीका अपनाया है और एक स्पष्ट एवं जानी पहचानी बात कही है कि मरी हुई मक्खियां एक अच्छे से मरहम को खराब कर देती हैं और उसमें बदबू पैदा कर देती हैं। यह पिछले अध्याय के अंत में बताए गए सत्य की प्रतीकात्मक पुष्टि है कि एक पापी बहुत सारी अच्छाइयों को नष्ट कर देता है। जैसे छोटी छोटी मरी हुई मक्खियां एक बढ़िया मरहम को खराब कर देती हैं, वैसे ही मनुष्य की थोड़ी सी मूर्खता किसी समझदार और सम्मानजनक मनुष्य की इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती है। इस पद के द्वारा उपदेशक स्मरण दिलाता है कि छोटी से छोटी बातों के भी परिणाम होते हैं, इसलिए व्यक्ति ध्यानपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे और ईश नियमों का अनुपालन करते हुए अपना जीवन यापन करे।

0: पिता।
1: आगे उपदेशक इस अध्याय के दूसरे और तीसरे पदों में भी मूर्ख और बुद्धिमान के बीच अंतर स्पष्ट करता है। कहता है, बुद्धिमान का हृदय भलाई की ओर झुकता है और मूर्ख का हृदय बुराई की ओर। मार्ग पर चलने वाले मूर्ख को बुद्धि नहीं सूझती, वह सबको यह दिखा देता है कि वह कितना मूर्ख है। श्रोताओं, बाइबल धर्म ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद में बुद्धिमान का हृदय भलाई की ओर झुकता है और मूर्ख का हृदय बुराई की ओर को अ वाइज मैन्स हार्ट इज एट हिज राइट हैंड बट ए फूल्स हार्ट एट हिज लेफ्ट अनुदित किया गया है। लेखक कहता है कि समझदार व्यक्ति का हृदय उसके दाहिने हाथ में होता है, जबकि मूर्ख बेवकूफ का दिल उसके बाएं हाथ में, क्योंकि दाहिने हाथ को शक्ति, हुनर और अनुग्रह का हिस्सा माना जाता था। इसलिए दाहिना समझदार की शक्ति माना जाता है। यह बात मूर्ख व्यक्ति के लिए सच नहीं होती जिसका हृदय उसके बाएं हाथ में होता है। वस्तुतः दाया एक और मजबूत, सुदृढ़ और भले लोगों का प्रतीक है, जबकि बाएं को स्वाभाविक रूप से कमजोर और बुरे लोगों का संकेत मान लिया गया है। लैटिन शब्द सिनिस्टर का अर्थ भी बायां ही है। उपदेशक कहता है कि यदि व्यक्ति बुद्धि और विवेक से काम लेगा तो उसका हृदय हमेशा भलाई की ओर झुकेगा, जबकि यदि वह बेवकूफी करता रहेगा तो उसका हृदय भी बुराई की ओर झुकेगा। बुद्धिमानी और मूर्खता के बीच अंतर दर्शाकर उपदेशक ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य का आंतरिक स्वभाव उसे सुरक्षा या बर्बादी की ओर ले जाता है। समझदारी भरी सोच स्वाभाविक रूप से लाभदायक, हितैषी और सुरक्षित विकल्पों की ओर ले जाती है, जबकि मूर्खता से भरा व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को और खुद की खामियों को खुलकर सबके समक्ष रख देता है। एक तरह उसमें मूलभूत व्यवहारिक ज्ञान या यूं कहें सामान्य ज्ञान की कमी होती है और वह मूर्खता को सबके समक्ष प्रकट कर अपना ही अहित कर लेता है। आगे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 4थे पद में उपदेशक सुलेमान एक व्यावहारिक सी बात बताता हुआ कहता है, जब शासक तुम पर अप्रसन्न हो तो अपना काम मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य बहुत सी गलतियों से बचाता है। श्रोताओं, इस पद का मुख्य संदेश यही है कि जब आप किसी शासक, मालिक या नियोजक के साथ परेशानी में हों तो घबराने या नाराज होने से बेहतर है कि आप खुद पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध को जाहिर न होने दें और शांत रहें, क्योंकि धैर्यपूर्वक शांत रहने से किसी बुरे झगड़े को और बिगड़ने से रोका जा सकता है। उपदेशक का विचार यह प्रतीत होता है कि मुश्किल हालातों में भी अपने पद या अपने काम का परित्याग न करें, अपने पद के प्रति वफादार रहें और पाओगे कि समझौता बड़े गुनाहों को भी शांत कर देता है। वस्तुतः श्रोताओं, यहां उपदेशक हमें याद दिलाना चाहता था कि इस जीवन में सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ न्यायपूर्ण नहीं है। बेवकूफ और मूर्ख लोगों को बड़े नेतृत्व वाले पदों पर आसीन कर दिया जाता है और चाहे वे जो भी करें, जितनी भी गलतियां किया करें, उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, जबकि ईमानदार, कर्मठ और प्रज्ञावान एवं समझदार लोगों को नीचा दिखाया जाता है। किंतु अपनी प्रज्ञा और विवेक का इस्तेमाल कर व्यक्ति इस अन्याय के आगे झुके नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करे। आगे इसी विचार को जारी रखते हुए उपदेशक 5 से लेकर 7 तक के पदों में कहता है, मैंने पृथ्वी पर एक बुराई देखी है, एक ऐसी गलती जिसे शासक किया करते हैं। मूर्खों की नियुक्ति बड़े बड़े पदों पर होती है और धनियों की छोटे छोटे पदों पर। मैंने दासों को घोड़ों पर यात्रा करते और शासकों को दासों जैसा पैदल चलते देखा है। श्रोताओं, अपने जीवन में भी अपने कार्यस्थलों पर हमने इस बात का अनुभव किया है कि मूर्ख और बेवकूफ या नाकाबिल लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है, जबकि बुद्धि सम्मत, बुद्धिमान, समझदार, काबिल और योग्य लोगों को नीचे के पद दिए जाते हैं। संभवतः इसलिए कि मूर्ख को किसी की सिफारिश पर रखा जाता है, जबकि प्रज्ञावान और विवेकी की सिफारिश करने के लिए कोई नहीं होता। दुर्भाग्यवश हमारी गलती के कारण नहीं, अपितु यह खराब नेतृत्व की वजह से ऐसा होता है। दासों का घोड़ों पर सवार होना और राजकुमारों का पैदल चलना, यह दर्शाता है कि दुनिया का संतुलन ही बिगड़ गया है। इन शब्दों के द्वारा उपदेशक ने हम सबको अन्याय के विरुद्ध सावधान करना चाहा है। हम सदैव सत्य और न्याय के रास्ते पर चलें।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापलियो चौदहवें विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुमारी माता मरियम का स्वर्गरोहण महोत्सव कस्तल गंदोल्फो में मनाएंगे। वे कस्तल गंदोल्फो संत थॉमस के विला नोवा पल्ली में स्वर्गरोहण का समारोही मिस्सा बलिदान अर्पित करेंगे, जैसे कि उन्होंने विगत वर्ष किया था। मिस्सा बलिदान के उपरांत संत पापा विश्वासियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ करेंगे। संत पापा लियो कस्तल गंदोल्फो के अपने परम धर्माध्यक्ष निवास 12 अगस्त को ही लौट गए। वे वहां आगामी मंगलवार 18 अगस्त तक रहेंगे। संत पापलियो चौदहवें ने परम धर्म पीठीय ऐतिहासिक विज्ञान समिति हेतु 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की। 3 नए सदस्य इस प्रकार हैं: इतिहासकार उम्बेर्तो लोंगो, जो रोम इटालियन हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट फॉर द मिडल एज के संचालक हैं; फ्रांचेस्को चेसारियो वर्सेस्टार के अजम्पशन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष, जो सेवा निर्वित हैं; और अन्ना बारंस्का, जो पोलैंड में जॉन पॉल द्वितीय कैथोलिक महाविद्यालय के ह्यूमैनिटीज संकाय से जुड़ी हुई प्राध्यापिका हैं। परम धर्मपीठ ऐतिहासिक विज्ञान समिति की स्थापना 1954 में संत पीयूष 12वें के द्वारा की गई थी, जो 18 अगस्त 1883 को प्रेरितिक पत्र सापेनुमेरो कासिदेरांतेस के जरिए संत पापालियो 13वें द्वारा स्थापित ऐतिहासिक अध्ययन हेतु गठित कार्डिनल कमीशन की परंपरा को आगे बढ़ाती है। समिति के कार्य की विशेषता कलिस्सा के संग्रहालय विरासत, खासकर वैटिकन संग्रहालय पर निरंतर ध्यान देना है। इस संदर्भ में संत पापाओं के द्वारा कई अपीलें की गई हैं कि वे वैटिकन परम धर्मपीठीय संग्रहालय की बेहतर और उचित देखरेख हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति करें। इस समिति के चेयरमैन येसु समाजी पुरोहित मारेक इगालोट हैं, जबकि समिति के सचिव पियर अंतोनियो पियाती हैं। पेरू में संत पापा लियो चौदहवें की प्रेरितिक यात्रा के पूर्व कार्डिनल कार्लो कास्तिल्लो ने वैटिकन रेडियो को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि यह पेरू के विश्वासियों के संग संत पापा की निकटता को व्यक्त करता है, जो देश की चुनौतियों के मध्य पेरू की ख्रिस्तीय प्रजा के लिए एकता, शांति और भ्रातृत्व के भाव को प्रोत्साहित करेगा। संत पापा लियो 11 से 17 नवंबर को दक्षिणी अमेरिका की प्रेरितिक यात्रा के दौरान 3 देशों पेरू, उरुग्वाय और अर्जेंटीना का दौरा करेंगे। अपने इस यात्रा के दौरान संत पापा लियो उन 4 शहरों लीमा, चिकलायो, कुस्को और पुकालापा का दौरा करेंगे, जहां उन्होंने प्रेरित और धर्माध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। वैटिकन रेडियो को दिए गए अपने साक्षात्कार में लीमा के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल कार्लो कास्तिल्लो ने पेरू वासियों की ओर से अपनी अपार खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संत पापा लियो का उन स्थानों में लौट कर आना जहां उन्होंने एक प्रेरित के रूप में अपनी सेवाएं दी, पेरू के लोगों के हृदय को प्रेम से भर देगा। उन्होंने कहा, लीमा के महाधर्माध्यक्ष स्वरूप मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि हम सभी बेसब्री से संत पापा के आने का इंतजार करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पेरू एक ऐसा देश है जहाँ कैथोलिक परंपरा बहुत मजबूत है और संत पापा का स्वागत लोगों के द्वारा, पेरू की पूरी आबादी के द्वारा एक सच्चे मित्र स्वरूप किया जाएगा। कार्डिनल कास्तिल्लो ने कहा, यह खबर न केवल हमें अपार खुशी से भरती है बल्कि हमें अपने विश्वास में बने रहने को मजबूती प्रदान करती है, जिससे हम उनका स्वागत कर सकें और अपने ख्रिस्तीय अनुभव को नई गति दे सकें। उधर आगामी 15 अगस्त को करुणा के कार्य में संलग्न संत इजिदियो समुदाय के द्वारा विभिन्न तबके के लोगों के लिए कई समारोहों का आयोजन किया जाएगा। संत इजिदियो समुदाय ने फेरागोस्तो के लिए अपने कार्यों की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिनमें अकेलेपन और असहनीय गर्मी की मार झेल रहे लोगों के संग गरीबों और सबसे कमजोर लोगों पर अधिक ध्यान देने की बात शामिल की गई है।
इस संदर्भ में संत एजिदियो समुदाय ने रोम और इटली के दूसरे शहरों में कई मिलन और भोज का आयोजन किया है, जिनमें पारंपरिक तरबूज समारोह शामिल है। यह उन लोगों को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया है जो लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। अकेलेपन में रहने वाले बुजुर्ग, बेघर और अप्रवासी गण, जिनमें से कुछ एक मानवीय सहायता पलायन मार्ग से आए और अब पूरी तरह से दूसरों के संग घुल मिल गए हैं, उनमें से कई लोग खाना भी बनाएंगे और परोसेंगे, जिनमें कुछ अफगान भी शामिल हैं, जो आज से ठीक 5 साल पहले 15 अगस्त 2021 को काबुल से पलायन किया था। एकता और मिलन की पार्टियां, दोपहर का भोजन और दूसरे अन्य एकता के कार्यक्रम केवल रोम में ही नहीं बल्कि जेनेवा, मिलान, पादुआ, नेपल्स और इटली के दूसरे शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे। उधर एशिया पैसिफिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष रैन पी जेमिनेज ने 10 अगस्त को गहरी समुद्री खनन के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, हम गहरे समुद्री खनन से जुड़े फैसलों की जिम्मेदारी लेने वाले सभी लोगों को सम्मान के साथ प्रोत्साहन देते हैं कि वे समझदारी, पारदर्शिता, विनम्रता और जनहित का ख्याल रखते हुए अपने कार्यों में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक घटनाएं हमें सिखलाती हैं कि जब विज्ञान उन कामों के नतीजों के बारे में अनिश्चित रहता है जिनसे गंभीर या ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, तो समझदारी हमें विनम्रता, समझदारी और प्रार्थना में आगे बढ़ने का आह्वान करती है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार।
1: कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और फादर संजय दिलीप एक्का।
0: पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित उपदेशक ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न है।

मरी हुई मक्खियां सुगंधित द्रव्य बिगाड़ती हैं, उसी प्रकार थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती हैं। श्रोताओं, ये थे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के प्रथम पद में निहित शब्द। विगत सप्ताह इन्हीं पदों की व्याख्या से हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबल एक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस अध्याय का मुख्य संदेश समझदारी और मूर्खता के बीच एक व्यावहारिक अंतर दर्शाना है, जो दिखाता है कि कैसे थोड़ी सी मूर्खता जिंदगी भर की समझदारी को बर्बाद कर सकती है। उपदेशक छोटी छोटी सूक्तियों का इस्तेमाल कर समझाता है कि समझदारी से पूर्ण चुनाव, सोच समझकर कही गई बातें और सही तैयारी से जिंदगी आसान हो जाती है, जबकि मूर्ख लोग आलस और लापरवाही भरी बातों से खुद को बर्बाद कर लेते हैं। 10वें अध्याय में थोड़ी सी मूर्खता की नुकसान पहुंचाने वाली ताकत, तैयारी की अहमियत और अपने शब्दों पर नियंत्रण रखने की जरूरत पर बल दिया गया है। यह अध्याय प्रज्ञा, बुद्धि और समझदारी के शांत एवं प्रायः नजरअंदाज किए जाने वाले लाभों और मूर्खता के विनाशकारी स्वभाव के बीच अंतर दर्शाता है। इस अध्याय के प्रथम पद में ही उपदेशक स्मरण दिला देता है कि जिस प्रकार मरी हुई मक्खियां सुगंधित द्रव्य बिगाड़ती हैं, उसी प्रकार थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती हैं। इस पद में सुलेमान ने कहावतों का एक जाना पहचाना तरीका अपनाया है और एक स्पष्ट एवं जानी पहचानी बात कही है कि मरी हुई मक्खियां एक अच्छे से मरहम को खराब कर देती हैं और उसमें बदबू पैदा कर देती हैं। यह पिछले अध्याय के अंत में बताए गए सत्य की प्रतीकात्मक पुष्टि है कि एक पापी बहुत सारी अच्छाइयों को नष्ट कर देता है। जैसे छोटी छोटी मरी हुई मक्खियां एक बढ़िया मरहम को खराब कर देती हैं, वैसे ही मनुष्य की थोड़ी सी मूर्खता किसी समझदार और सम्मानजनक मनुष्य की इज्जत को मिट्टी में मिला सकती है। थोड़ी सी मूर्खता प्रज्ञा और सम्मान को चौपट कर सकती है। इस पद के द्वारा उपदेशक स्मरण दिलाता है कि छोटी से छोटी बातों के भी परिणाम होते हैं, इसलिए व्यक्ति ध्यानपूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे और ईश नियमों का अनुपालन करते हुए अपना जीवन यापन करे।

आगे उपदेशक इस अध्याय के दूसरे और तीसरे पदों में भी मूर्ख और बुद्धिमान के बीच अंतर स्पष्ट करता है। कहता है, बुद्धिमान का हृदय भलाई की ओर झुकता है और मूर्ख का हृदय बुराई की ओर। मार्ग पर चलने वाले मूर्ख को बुद्धि नहीं सूझती, वह सबको यह दिखा देता है कि वह कितना मूर्ख है। श्रोताओ, बाइबल धर्म ग्रंथ के अंग्रेजी अनुवाद में बुद्धिमान का हृदय भलाई की ओर झुकता है और मूर्ख का हृदय बुराई की ओर को अ वाइज मैन्स हार्ट इज एट हिज राइट हैंड बट ए फूल्स हार्ट एट हिज लेफ्ट अनुदित किया गया है। लेखक कहता है कि समझदार व्यक्ति का हृदय उसके दाहिने हाथ में होता है, जबकि मूर्ख बेवकूफ का दिल उसके बाएं हाथ में, क्योंकि दाहिने हाथ को शक्ति, हुनर और अनुग्रह का हिस्सा माना जाता था। इसलिए दाहिना समझदार की शक्ति माना जाता है। यह बात मूर्ख व्यक्ति के लिए सच नहीं होती जिसका हृदय उसके बाएं हाथ में होता है। वस्तुतः दाया एक और मजबूत, सुदृढ़ और भले लोगों का प्रतीक है, जबकि बाएं को स्वाभाविक रूप से कमजोर और बुरे लोगों का संकेत मान दिया गया है। लैटिन शब्द सिनिस्टर का अर्थ भी बायां ही है। उपदेशक कहता है कि यदि व्यक्ति बुद्धि और विवेक से काम लेगा तो उसका हृदय हमेशा भलाई की ओर झुकेगा, जबकि यदि वह बेवकूफी करता रहेगा तो उसका हृदय भी बुराई की ओर झुकेगा। बुद्धिमानी और मूर्खता के बीच अंतर दर्शाकर उपदेशक ने यह कहना चाहा है कि मनुष्य का आंतरिक स्वभाव उसे सुरक्षा या बर्बादी की ओर ले जाता है। समझदारी भरी सोच स्वाभाविक रूप से लाभदायक, हितैषी और सुरक्षित विकल्पों की ओर ले जाती है, जबकि मूर्खता से भरा व्यक्ति रोजमर्रा की जिंदगी में खुद को और खुद की खामियों को खुलकर सबके समक्ष रख देता है। एक तरह उसमें मूलभूत व्यवहारिक ज्ञान या यूं कहें सामान्य ज्ञान की कमी होती है और वह मूर्खता को सबके समक्ष प्रकट कर अपना ही अहित कर लेता है। आगे उपदेशक ग्रंथ के 10वें अध्याय के 4थे पद में उपदेशक सुलेमान एक व्यावहारिक सी बात बताता हुआ कहता है, जब शासक तुम पर अप्रसन्न हो तो अपना काम मत छोड़ो, क्योंकि धैर्य बहुत सी गलतियों से बचाता है। श्रोताओ, इस पद का मुख्य संदेश यही है कि जब आप किसी शासक, मालिक या नियोजक के साथ परेशानी में हों तो घबराने या नाराज होने से बेहतर है कि आप खुद पर नियंत्रण रखें, अपने क्रोध को जाहिर न होने दें और शांत रहें, क्योंकि धैर्यपूर्वक शांत रहने से किसी बुरे झगड़े को और बिगड़ने से रोका जा सकता है। उपदेशक का विचार यह प्रतीत होता है कि मुश्किल हालातों में भी अपने पद या अपने काम का परित्याग न करें, अपने पद के प्रति वफादार रहें और पाओगे कि समझौता बड़े गुनाहों को भी शांत कर देता है। वस्तुतः श्रोताओ, यहां उपदेशक हमें याद दिलाना चाहता था कि इस जीवन में सब कुछ सही नहीं है, सब कुछ न्यायपूर्ण नहीं है। बेवकूफ और मूर्ख लोगों को बड़े नेतृत्व वाले पदों पर आसीन कर दिया जाता है और चाहे वे जो भी करें, जितनी भी गलतियां किया करें, उन्हें स्वीकार कर लिया जाता है, जबकि ईमानदार, कर्मठ और प्रज्ञावान एवं समझदार लोगों को नीचा दिखाया जाता है। किंतु अपनी प्रज्ञा और विवेक का इस्तेमाल कर व्यक्ति इस अन्याय के आगे झुके नहीं, बल्कि डटकर उसका सामना करे। आगे इसी विचार को जारी रखते हुए उपदेशक 5 से लेकर 7 तक के पदों में कहता है, मैंने पृथ्वी पर एक बुराई देखी है, एक ऐसी गलती जिसे शासक किया करते हैं। मूर्खों की नियुक्ति बड़े बड़े पदों पर होती है और धनियों की छोटे छोटे पदों पर। मैंने दासों को घोड़ों पर यात्रा करते और शासकों को दासों जैसा पैदल चलते देखा है। श्रोताओ, अपने जीवन में भी अपने कार्यस्थलों पर हमने इस बात का अनुभव किया है कि मूर्ख और बेवकूफ या नाकाबिल लोगों को ऊंचे पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है, जबकि बुद्धि सम्मत, बुद्धिमान, समझदार, काबिल और योग्य लोगों को नीचे के पद दिए जाते हैं।
संभवतः इसलिए कि मूर्ख को किसी की सिफारिश पर रखा जाता है, जबकि प्रज्ञावान और विवेकी की सिफारिश करने के लिए कोई नहीं होता। दुर्भाग्यवश हमारी गलती के कारण नहीं, अपितु यह खराब नेतृत्व की वजह से ऐसा होता है। दासों का घोड़ों पर सवार होना और राजकुमारों का पैदल चलना, यह दर्शाता है कि दुनिया का संतुलन ही बिगड़ गया है। इन शब्दों के द्वारा उपदेशक ने हम सबको अन्याय के विरुद्ध सावधान करना चाहा है। हम सदैव सत्य और न्याय के रास्ते पर चलें।

आप वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापलियो 14वें विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुमारी माता मरियम का स्वर्गरोहण महोत्सव कस्तल गंदोल्फो में मनाएंगे। वे कस्तल गंदोल्फो संत थॉमस के विला नोवा पल्ली में स्वर्गरोहण का समारोही मिस्सा बलिदान अर्पित करेंगे, जैसे कि उन्होंने विगत वर्ष किया था। मिस्सा बलिदान के उपरांत संत पापा विश्वासियों के संग देवदूत प्रार्थना का पाठ करेंगे। संत पापा लियो कस्तल गंदोल्फो के अपने परम धर्माध्यक्ष निवास 12 अगस्त को ही लौट गए। वे वहां आगामी मंगलवार 18 अगस्त तक रहेंगे। संत पापलियो 14वें ने परम धर्म पीठीय ऐतिहासिक विज्ञान समिति हेतु 3 नए सदस्यों की नियुक्ति की। 3 नए सदस्य इस प्रकार हैं: इतिहासकार उम्बेर्तो लोंगो, जो रोम इटालियन हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूट फॉर द मिडल एज के संचालक हैं; फ्रांचेस्को चेसारियो वर्सेस्टार के अजम्पशन यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जो सेवा निर्वित हैं, और अन्ना बारंस्का जो पोलैंड में जॉन पॉल द्वितीय कैथोलिक महाविद्यालय के ह्यूमैनिटीज संकाय से जुड़ी हुई प्राध्यापिका हैं। परम धर्मपीठ ऐतिहासिक विज्ञान समिति की स्थापना 1954 में संत पीयूष 12वें के द्वारा की गई थी, जो 18 अगस्त 1883 को प्रेरितिक पत्र सापेनुमेरो कासिदेरांतेस के जरिए संत पापालियो 13वें द्वारा स्थापित ऐतिहासिक अध्ययन हेतु गठित कार्डिनल कमीशन की परंपरा को आगे बढ़ाती है। समिति के कार्य की विशेषता कलिस्स के संग्रहालय विरासत, खासकर वैटिकन संग्रहालय पर निरंतर ध्यान देना है। इस संदर्भ में संत पापाओं के द्वारा कई अपीलें की गई हैं कि वे वैटिकन परम धर्मपीठीय संग्रहालय की बेहतर और उचित देख रेख हेतु विशेषज्ञों की नियुक्ति करें। इस समिति के चेयरमैन येसु सामाजी पुरोहित मारेक इगालोट हैं, जबकि समिति के सचिव पियर अंतोनियो पियाती हैं। पेरू में संत पापा लियो 14वें की प्रेरितिक यात्रा के पूर्व कार्डिनल कार्लो कास्तिल्लो ने वैटिकन रेडियो को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि यह पेरू के विश्वासियों के संग संत पापा की निकटता को व्यक्त करता है, जो देश की चुनौतियों के मध्य पेरू की ख्रिस्तीय प्रजा के लिए एकता, शांति और भ्रातृत्व के भाव को प्रोत्साहित करेगा। संत पापा लियो 11 से 17 नवंबर को दक्षिणी अमेरिका की प्रेरितिक यात्रा के दौरान 3 देशों पेरू, उरुग्वाय और अर्जेंटीना का दौरा करेंगे। अपने इस यात्रा के दौरान संत पापा लियो उन 4 शहरों लीमा, चिकलायो, कुस्को और पुकालापा का दौरा करेंगे, जहां उन्होंने प्रेरित और धर्माध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दी। वैटिकन रेडियो को दिए गए अपने साक्षात्कार में लीमा के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल कार्लो कास्तिल्लो ने पेरू वासियों की ओर से अपनी अपार खुशी जाहिर करते हुए कहा कि संत पापा लियो का उन स्थानों में लौट कर आना जहां उन्होंने एक प्रेरित के रूप में अपनी सेवाएं दी, पेरू के लोगों के हृदय को प्रेम से भर देगा। उन्होंने कहा, लीमा के महाधर्माध्यक्ष स्वरूप मैं पूरी ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि हम सभी बेसब्री से संत पापा के आने का इंतजार करते हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि पेरू एक ऐसा देश है जहां कैथोलिक परंपरा बहुत मजबूत है और संत पापा का स्वागत लोगों के द्वारा, पेरू की पूरी आबादी के द्वारा एक सच्चे मित्र स्वरूप किया जाएगा। कार्डिनल कास्तिल्लो ने कहा, यह खबर न केवल हमें अपार खुशी से भरती है, बल्कि हमें अपने विश्वास में बने रहने को मजबूती प्रदान करती है, जिससे हम उनका स्वागत कर सकें और अपने ख्रिस्तीय अनुभव को नई गति दे सकें। उधर आगामी 15 अगस्त को करुणा के कार्य में संलग्न संत इजिदियो समुदाय के द्वारा विभिन्न तबके के लोगों के लिए कई समारोहों का आयोजन किया जाएगा। संत इजिदियो समुदाय ने फेरागोस्तो के लिए अपने कार्यों की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिनमें अकेलेपन और असहनीय गर्मी की मार झेल रहे लोगों के संग गरीबों और सबसे कमजोर लोगों पर अधिक ध्यान देने की बात शामिल की गई है।
इस संदर्भ में संत इजिदियो समुदाय ने रोम और इटली के दूसरे शहरों में कई मिलन और भोज का आयोजन किया है, जिनमें पारंपरिक तरबूज समारोह शामिल है। यह उन लोगों को ध्यान में रखकर आयोजित किया गया है जो लंबे समय तक एक साथ रहते हैं। अकेलेपन में रहने वाले बुजुर्ग, बेघर और अप्रवासी गण, जिनमें से कुछ एक मानवीय सहायता पलायन मार्ग से आए और अब पूरी तरह से दूसरों के संग घुल मिल गए हैं, उनमें से कई लोग खाना भी बनाएंगे और परोसेंगे, जिनमें कुछ अफगान भी शामिल हैं, जो आज से ठीक 5 साल पहले 15 अगस्त 2021 को काबुल से पलायन किया था। एकता और मिलन की पार्टियां, दोपहर का भोजन और दूसरे अन्य एकता के कार्यक्रम केवल रोम में ही नहीं बल्कि जेनेवा, मिलान, पादुआ, नेपल्स और इटली के दूसरे शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे। उधर एशिया पैसिफिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष रैन पी जेमिनेज ने 10 अगस्त को गहरी समुद्री खनन के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, हम गहरे समुद्री खनन से जुड़े फैसलों की जिम्मेदारी लेने वाले सभी लोगों को सम्मान के साथ प्रोत्साहन देते हैं कि वे समझदारी, पारदर्शिता, विनम्रता और जनहित का ख्याल रखते हुए अपने कार्यों में आगे बढ़ें। उन्होंने कहा, ऐतिहासिक घटनाएं हमें सिखलाती हैं कि जब विज्ञान उन कामों के नतीजों के बारे में अनिश्चित रहता है जिनसे गंभीर या ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती, तो समझदारी हमें विनम्रता, समझदारी और प्रार्थना में आगे बढ़ने का आह्वान करती है। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।